0: फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही।

0: You are Ujala Radio Headlines. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar Groningen. De Iraanse president heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in naar een filmpje wat maandag op social media circuleerde. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख भाव अभाव होना न होना लाभ हानि और जीवन मरण ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? चल शुरू हो जा।
2: Ja, dat was niet de bedoeling. Ging eventjes iets mis daarmee.
1: Sa
0: अरे बस बस बस बस सा पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो अमस्टरडम से जो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं अपने संगीत के खजाने से, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी, इतना मुझे यकीन है। आप बेसब्री से इस पल को इंतज़ार करते होंगे। शुरू करती हूँ इस पैगाम से। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो फिर अपने खुशी के फिक्र मत करना। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद।

नाते नबी पेश था, आवाजें थी अब्दुल रहमान और साथियों का। इसे रूहानियत अंदाज में सुनवाते हैं भजन, दर्स है। मोरे शाम पल पल, मोरे मुख से निकले निस दिन तेरो नाम।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने कई शैलियों में गीत संगीत पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने गजल चुने हैं। उम्मीद है कि आप इस हिस्से के प्रोग्राम में लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी ना बनाया, अपना भी ना बनाया और किसी का होने भी ना दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी महान गजल गायिका बेगम अख्तर की आवाज में। कलाम था शायर शकील बडायूनी का। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम यार आते हो, किसी का हो के कहता है, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोर व शोर से लहरें बहता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बयां करते जो हाल दिल तो यूं मुस्कुरा देते, अब वही रो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझ को खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल पंकज उदास की आवाज में। कलाम था शायर शकील बड़ायूनी का। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही तो होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब भी रोते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल महान गायक केएल सहगल की आवाज में। उनके जैसा तो कोई हमको दोबारा ना मिला, हम भंवर में ही रहे, हम भंवर में ही रहे, हमको किनारा ना मिला। डर गए जब भी वहशते हालात से हम, मनाना चाहा था मगर कोई सहारा ना मिला। चांदनी रात में तारों की आसमान पे हमें उनकी आँखों की तरह, उनकी आँखों की तरह कोई सितारा ना मिला। रात भर क्यों उनकी हंसी, उनकी हाइयाँ याद आई, जिनकी बाहों में जैयद कोई सहारा ना मिला।

अनमोल नगमा पेश था तलत महमूद की मखमली आवाज में। मौसिकार शिवम की मौसिकी थी, नगमकार था शायर नक्शब। अब लीजिए पेश है लकी अली और सुनिधि चौहान की गाए हुए ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। मौसिकार M.M. क्रीम की मौसिकी थी, कलाम था शायर निदा फासली का। अगला दो गाना सुनवाएंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है। तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। ऐसे में कोई किसी का दीवाना ना बने।

छू लेने वाली नगमा पेश था से रामचंद्र की मौसिकी थी। दर्श को लिखने वाले थे पे एल संतोषी। अब लीजिए पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

अनमोल नगमा पेश था, रवि की मौसिकी थी और साहिर लुधियानवी का बोल था। ऐसी हसीन चांदनी पहले पहले कभी न थी, सुनाने को जा रहा है मीठी आवाज में किशोर कुमार।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में हमने फिल्मी दुनिया के उस महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ जो नए उभरते सितारों का प्रेरणा है, उन महान कलाकारों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र, जिसके बारे में हमने कई प्रोग्रामों में बयान किया है। धर्मेंद्र का प्रेरणा था दिलीप कुमार। वो बड़ा होकर दिलीप कुमार की तरह अदाकार बनना चाहते थे। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है, कैसे उनकी बचपन बीता और कब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि धर्मेंद्र ने अपना किरदार दिलो जान से निभाते थे, और जब उसे सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तो उसका क्या जवाब है, तो धर्मेंद्र साहब ने कहा, मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गाना पर डांस करने में थोड़ी घबराहट होती है। आगे क्या होता है, पहले एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म सीता और गीता का गीत पेश था। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम कर चुका था जो आवाम पसंद किया, लेकिन उसने खुद कहा था कि एक फिल्म जो उसे खुद पसंद था वो थी फिल्म फूल और पत्थर अदाकारा मीना कुमारी के साथ। धर्मेंद्र की पहली फिल्म मीना कुमारी के साथ थी फिल्म पूर्णिमा। धर्म ने कहा जब उसे कहा गया कि वो अदाकारा मीना कुमारी के साथ काम करेंगे तो वो एक तरफ घबराहट महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ जज्बा। वो मीना कुमारी के बारे में जानना चाहते थे, वो कैसी थी। पर दोस्तों ने धर्म को तसल्ली दिलाए कि जिन्होंने मीना जी के साथ काम किए हैं सभी के साथ वो अपनापन जताती थी और नए उभरते सितारों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। हाँ, दोस्तों ने धर्म से एक मशवरा दिया था कि पहली बार जब तुम मीना जी के सामने खड़े होंगे तो तुम जरूर उनकी पांव छूना। धर्मेंद्र ने कहा मीना जी से मिलकर उसे सुकून मिला और जिस तरह से मीना जी मिलकर बात की वो बयान नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक साथ कई फिल्मों में काम किए। पहली फिल्म थी पूर्णिमा, फिर मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, चंदन का पलना, मछली दीदी और बहारों की मंजिल। अब हम सुनवाते हैं फिल्म पूर्णिमा में से ये दो गाना। गाने वाले हैं मुकेश और लता मंगेशकर।

0: फिल्म पूर्णिमा में से ये जुगल गीत पेश था जो मीना कुमारी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र जी मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। पहले तो मीना जी से मिलने के ख्याल से घबराहट महसूस कर रहा था, पर कई फिल्मों में साथ काम करने से दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई थी। इसलिए क्योंकि धर्म ने मीना जी का बहुत ख्याल रखता था। धर्मेंद्र ने कहा, मीना जी के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो खुलेआम उस कर्ज को कबूल किया कि उसने उसे वो बना दिया जो वो आज है। एक बार एक जर्नलिस्ट धर्म से मिलने उनके घर गया, इंटरव्यू लिया, फिर चाय और शरबत पीने के बाद वो वापस जाना चाहते थे, पर आगे के बागीचे में काम जो हो रहा था, धर्म ने कहा, हम आपको दूसरी तरफ से रास्ता दिखाते हैं। दोनों पीछे के गार्डन से गुजर रहे थे तो देखा दो औरतें बैठे हुए थे। धर्म जर्नलिस्ट को दोनों से तारुफ कराए और अपने बीवी प्रकाश से कहा, ये मेरा दोस्त है। प्रकाश कौर ने अदब से सलाम किया और कुछ कहा नहीं। फिर भी जर्नलिस्ट कहा, उस पल वो भूला नहीं। जर्नलिस्ट ने कहा, वो धर्म से मिलने कई बार उनके घर गए, पर हम उसकी बीवी और बेटियों की करीब नहीं जा सकते थे। फिर भी प्रकाश कौर घर गृहस्थी भागदौड़ सब वो संभालती थी। एक बार किसी ने धर्म से सवाल किया कि सर, आपने बेटा सनी की फिल्म बेटा लॉन्च किया शुरू किया तो जाहिर है दूसरी बेटा बॉबी से भी इसी लाइन में काम करवाएंगे, और आपकी बेटियों के बारे में मैं क्या ख्याल है? तो धर्म उसके तरफ गौर से देखा और कहा, प्लीज डार्लिंग, कभी ना लिखे कि आपने मुझसे ये सवाल किया है। धर्मेंद्र के दोनों बेटे फिल्मों में कामयाब हुए। सनी देओल की पहली फिल्म बेताब जो नेत्रेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, तहलका मचा दिया था। सनी देओल के साथ थी अदाकारा अमृता सिंह, और दूसरा बेटा बॉबी देओल की फिल्म बरसात जो नेत्रेंद्रियन में रिलीज हुआ था, ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। साथ में थी ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर और डेनी डेजोंगपा। कहानी आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार से ये डुएट।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

द बर्निंग ट्रेन से ये गीत पेश था और ये दो गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल फिल्मी दुनिया में मकबूल हुए। दोनों बेटे अपने वालदेन के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थे। सनी देओल शादी के बाद अपने बीवी पूजा, दो बेटे करण और राजवीर और बॉबी अपने बीवी तानिया, दो बेटे आर्यमन और धर्म सभी मिलजुल के एक साथ रहते थे। धर्मेंद्र ने कहा अपने दो बेटे सनी और बॉबी की मेहनत फिल्मों में देखकर कभी कभी आंखें नम हो जाता था। हम सब आज भी हर रोज जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे पोते एक दिन भी फिल्मों में कदम रखेंगे। उसमें मेरा खून जो है और ज़रूर कामयाब होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चों को अपने वालदेन से इतनी आज़ादी मिल रहे है। और कहा धर्म ने कि ऐसे कंप्यूटर्स है जिनसे अच्छे और बुरे दोनों नतीजा सामने निकले हैं। सभ्यता और तहजीब जिसके लिए हम हिंदुस्तानी जाने जाते थे वो भी जा चुके हैं। मुझे अपने बेटों पर बहुत फख्र है जो उन संस्कारों, तालीम व तरबियत को बरकरार रखे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं जो मेरी बीवी प्रकाश और मैंने उन्हें दिए हैं। जूहू में उनका बंगला रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों और यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी घर खुला हुआ है और जब हम एक ही छत के नीचे होते हैं तो हम कभी भी सिनेमा के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब हम आपको फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किए थे जीनत अमान, सिमी गरवाल, शमी कपूर और अमजद खान।

इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र ने कहा कि इस दौर के माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी दिए हैं और कंप्यूटर के ज़रिए क्या सीखते हैं क्या ना, पर वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो अपने बीवी प्रकाश के साथ अपने बच्चों को संस्कार, तालीम व तरबियत दिए हैं जो अभी भी बरकरार है। धर्मेंद्र जी की मेहनत फिल्मी दुनिया में रंग लाए, अवाम उसे झुक कर सलाम करते हैं, फिर भी उसने अपने आप से सवाल करता, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिर भी पोस्टर में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोनी ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, क्या मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ? मैं कई बार अपने काम से फिल्मों में उम्मीदवार था, मुझे कोई अवार्ड ना मिला, मुझे गिला नहीं, रंज नहीं, अवाम तो मुझे सराहते प्यार करते हैं, वो अहम है। धर्मेंद्र ने फिल्म गद्दर के बारे में जिक्र किया, जिस फिल्म का हिदायतकार था अनिल शर्मा और प्रोड्यूस किया था नितिन केनी। फिल्म गद्दर में सनी देओल का किरदार लाजवाब कमाल का काम किया। बतवारे का समय नेखदी सैफ न फेतह की कहानी थी। इस फिल्म न सिर्फ इंडिया में पर विदेश में भी लोग इस फिल्म को बहुत पसंद किया, पर अफसोस फिल्म गद्दर में कई उम्मीदवार थे पर बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म लगान को दिया गया। फिल्म गद्दर 9 बार उम्मीदवार थे। अब हम आपको फिल्म घायल में से एक गीत सुनवाएंगे। इस फिल्म को 7 बार फिल्म फेयर से नवाजा गया था और इसी फिल्म में सनी देओल को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का खिताब से नवाजा गया था।

फिल्म घायल का प्रोड्यूसर था धर्मेंद्र साहब और हिदायतकार थे राजकुमार संतोषी। अब हम अभय देओल के बारे में इत्तला करेंगे। अभय देओल धर्मेंद्र का भाई अजीत सिंह देओल का बेटा है। अभय अपने चचा धर्मेंद्र को पापा और अपना पापा को अंकल बुलाते हैं। वो बचपन से ही इसी परिवार में पले बड़े हैं। अभय देओल ने 2-4 फिल्मों में एक्टिंग किया है। फिल्म सोचा न था का पेशकश था धर्मेंद्र जी। इस फिल्म में अभय देओल के साथ ही अदाकारा आयशा टाकिया। पत्रकार जब अभय से सवाल किया कि वो आज तक धर्मेंद्र के साथ क्यों फिल्म में काम नहीं किया, तो उसने कहा, मैं पापा को बहुत इज्जत करता हूँ, उसके सामने डायलॉग बोलना तो सवाल ही नहीं। मुझे नहीं पता कि अगर वो वहाँ हुआ तो मैं नॉर्मल रह पाऊँगा या नहीं। और कहा अभय, मैं भाइयों सोनी और बॉबी के साथ काम करना पसंद करूँगा, लेकिन बात वही, मुझे उनके साथ एक्टिंग करना है तो मुझे बेहतरीन होना है। आप फिल्मी दुनिया सुन रहे हैं। कई प्रोग्रामों में हमने महान फनकार धर्मेंद्र के बारे में बयान किया, उनके बचपन के बारे में, कब वो फिल्मों की तरफ रुख किया, धर्म के बीवी प्रकाश कौर उनके बच्चों के बारे में इत्तला किया। पर सारी दुनिया जानते हैं धर्मेंद्र का दूसरा देओल खानदान था। तो आज के लिए फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ। अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारुशक धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं तलत महमूद से ये नगमा।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा, संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन। मोहब्बत भरे अंदाज में लीजिए पेश है ये दो गाना।

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया। नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ रोने से। मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ।

फिल्म मासूम में से ये गीत लिया है, जिस फिल्म में शबाना आजमी और नासिरुद्दीन शाह ने अदाकारी किए थे। अब आइए सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये जुगल गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत रचना और शायर इंदिवार का लिखा तर्ज था। तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी।

संगीतकार हिमेश रेशमिया का संगीत रचना बोल सुधाकर शर्मा का था। अब सुनवाते हैं अगला गीत। आशा भोसले शोखी आवाज में क्या सुनाएंगी, लीजिए पेश है।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी ये गीत सुना आशा भोसले की शोखी आवाज में। किस्मत पे नाज है, किस्मत पे नाज है तो वजह तेरी मोहब्बत। खुशियाँ जो पास है, खुशियाँ जो पास है तो वजह तेरी मोहब्बत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के।

अनमोल नगमा पेश था, उषा खन्ना की मौसिकी थी, नगमकार था शायर जुगेश। इसी शहराना अंदाज में आप लुत्फ उठाइए अगला नगमा से।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा मौसिकार श्याम जी घनश्याम जी की मौसिकी थी और शायर साजन दहलवी का कलाम था और आवाज में चार चांद लगाने वाला था मोहम्मद रफी साहब। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। इसी मोहब्बत भरी अंदाज में सुनवाते हैं लता मंगेशकर से ये नगमा।

फिल्म अगर तुम न होते में से पेश था ये नगमा, संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन ने। रात को तेरी तस्वीर बना बैठा, तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि सीने से लगा बैठा, सोचा कि कहीं नजर ना लग जाए मेरे प्यार को, इसलिए अपने ही आंसू से मिटा डाला।

सॉन्ग पेश था तलत महमूद की शहद भरी आवाज में, संगीत से सवारे थे संगीतकार नौशाद अली ने। तेरा बिछड़ना कोई आम वाकया नहीं था। कई बरस बीत गए खुद को यकीन दिलाते हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।

अभी आपने मनहर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये दो गाना सुना। अगला दो गाना पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। नमस्कार। खादिमाते निशा।

The Rocking and Sensational Leader in Broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम आपके खिदमत में नशर किए जा रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं स्टूडियो से। मैं हूँ शहीद गुलजार, हरे को नमस्कार और सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ लेकर साज हाथों में, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज़।

मैं आया हूँ लेके साज हाथों में। द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। यू आर के जरिए कुछ मिले जुले संगीत में हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला, तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सुना जग सारा है, दिल से दिल मिल गया मैं तेरी हो गई, अरे तू मेरा हो जाना, इतना बदमाशी ना कर।

वारदात नामक फिल्म से तू मुझे जान से भी प्यारा है। मनोरंजन प्राप्त कीजिए यूआर से। उनका नंबर 02040090807 रेडियो के क्षेत्र के हर एक कामर काज के वास्ते।

0: But a lovely song.
1: तू मुझे जान से भी प्यारा है.
0: उजाला रेडियो के जरिए कुछ मिले जुले संगीत हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं. कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स और ऐसे में फिल्म मुलजिम का सिलेक्शन. कसे रहो मुझे अपनी बाहों में कसे रहो.

हवा हवा नकीला नकीला मेरे तुम। अरे कसे रहो मुझे बाहों में अपनी कसे रहो। मोहम्मद अजीज एंड बेबी डॉल ऑफ इंडिया अलीशा चिनॉय।

0: Nangila, Nangila. Hava, Hava, Nangila, Nangila.
1: लुत्फ आप उठाते ही रहे ना कुछ मिले जुले संगीत के साथ, ऐसे में हो जाए रोज शाम आती थी लेकिन जाती नहीं।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। हम आपको इस सुरीली माहौल में सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की ओर ले चलते हैं और आइए मिलकर सुनते हैं, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं युवार के जरिए। मिले जुले संगीत में आइए नीला सजीला सा यह आसमां, भूपेंद्र जी की आवाज। बीते हुए दिनों की याद में ये सिलेक्शन भी अर्ज है। फोन का नंबर आप नोट कर लेना, रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप फोन कर सकते हैं और नंबर है एमस्टरडेम में 020-409-0807। नीला सा झीला सा आसमां।

0: Ujala Radio, Radio. Tu jaane hai, toch, toch, toch.
1: Oh, kali kali aankhon wali, black eyes. काली काली आंखों वाली गुस्सा होके जाओ ना मेरे पीछे क्यों आते हो और कहीं जाओ ना दिस कुकिंग बप्पी लहरी एंड द मेलोडी क्वीन आशा जी की आवाज काली काली आंखों वाली गुस्सा होके जाओ ना

द ब्लैक आईज सॉन्ग। काली काली आंखों वाली गुस्सा होके जाओ ना, मेरे पीछे क्यों आते हो, और कहीं जाओ ना। द मेलोडी क्वीन, मेलोडी क्वीन आशा जी और डिस्को किंग बपी लहरी की आवाज में आप सुने हैं उजाला रेडियो का पैगाम है। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में, आइए ये सिलेक्शन भी सुनते हैं। शायद आपको याद होगा अजनबी तूफान।

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं यू आर उजाला रेडियो के जरिए और मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स में हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। एक नगमा हम आपको अब सुनाने वाले हैं, इसका साउंड ज्यादा ठीक नहीं है फिर भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज, ये जवानी है मेरी जान, झूमने गाने के लिए बजाने के लिए कुछ भी करने के लिए। फिल्म का नाम हीरो का चोर।

अरे काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, चौबारा से देखता तुझे दिन सारा, आंगन में तेरी खुलता मेरा झड़ोका, झांक लेती नीचे मिलते ही मौका। क्या बात है,

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत. उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, चौबीस घंटे लगातार ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जान।

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: सूरज छिपे अदरी बदरी, चंद्रमा छिपे अमावस आए, पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे हिच्छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।

फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। इस गीत को गाये गए है, बनाई गई है, लिखी गई है सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों के नाम के साथ। मोई खदान तो एक दूजे के लिए फिल्म का नाम, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अब पंकज उधास एंड साधना सरगम, फिल्म मोहरा का गीत।

0: things black.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

ए दिल वाला कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एनु मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

फिल्म छाया, हाँ फिल्म छाया से गीत को आप सुने तलत महमूद एंड लता जी से, और ये उजाला रेडियो है। एक बार फिर लता जी हिस्सा ले रही है।

तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों लगता है मुझको डर, लता जी की आवाज और फिल्म असली नकली का गीत आप सुने।

एक ऐसी आवाज जो हर शख्स की पर्सनालिटी में डल जाती थी, वो थी रफी साहब की आवाज। उनकी आवाज में गाई हुई गैर फिल्मी गजलों ने क्या गजब ढाया था।

बहरो थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio.

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों के साथ जो कि सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम बहुत प्यार से हम आपके लिए ही बना रहे हैं, तो इत्मीनान से सुनिए। और इसमें पहला गीत आज पेश है लता जी की आवाज़ में।

0: किले है चले आवो जहां हो तुम। लता जी की आवाज में गीत को आप सुने 1967 निखंतिन ज़ेफ़नन ज़स्तख की फिल्म राज से निकाला हुआ और कल्याण जी आनंद जी संगीतकार और इस फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ बबीता।
1: मेरी मदद करोगे?
2: चलो जान हाजिर है भैया।
1: तो फिर आज मेरी रूह की बेकरार घड़ियों में से चंद घड़ियां ले लो, आओ बैठो। बचपन में तुम अच्छा गाया करते थे, आज एक ऐसा गाना सुनाओ जो सोच से भरा हुआ हो।
2: क्या कह रहे हो भैया?
1: हाँ मनीष, मैं आज तक शारदा को नहीं भूला।
2: ठीक कहते हो भैया, भूलने के लिए मर्द नहीं औरत का दिल चाहिए।
3: क्यों नहीं, औरत सब कुछ भूल सकती है, उसका दिल समुंदर होता है। समुद्र में कई तूफान आते हैं, कई कश्तियां डूब जाती हैं, फिर सतह बराबर हो जाती है जैसे कोई कश्ती डूबी ही ना थी।
2: ये तो उनसे पूछे जिनकी कश्ती डूब गई।
1: ये बेचारी क्या जाने की मोहब्बत क्या चीज है, इसे क्या मालूम कि भूलना कितना कठिन है।
2: हाँ भैया, किनारे पर खड़ा तमाशाई डूबने वाले की हालत क्या जाने।
3: जिन्हें डूबने का अफसोस वो तूफानों से नहीं खिला करते, चोट खाकर इलाज नहीं ढूंढा करते, शीशा दिल चूर होने पर जोड़ा नहीं करते। जो मोहब्बत करते हैं उन्हें भूलना भी आना चाहिए।

जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आता है। मुकेश जी की आवाज में गीत आप सुने 1968 नईखंती नख्तन जेस्टर की फिल्म आबरू से निकाला हुआ सोनिक ओमी म्यूजिक कंपोजर और इन या तो इस फिल्म में उन दिनों काम किए अशोक कुमार के साथ विमी एंड निरूपा रॉय जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ।

तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रुहाई नहीं मांगी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ 1961 नई खंतिन एनन जस्तर की फिल्म जब प्यार किसी से होता है, और इस फिल्म में काम किए देव आनंद के साथ में आशा पारेख जी।

चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, लता जी की आवाज में आप सुने 1957 के फिल्म और नाम पेइंग गेस्ट, सचिन देव बर्मन संगीतकार और इस फिल्म में काम किए देव आनंद के साथ नूतन जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ।

अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप गीत को सुने 1971 1971 तक की फिल्म और नाम महबूब की मेहंदी। इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और काम किए राजेश खन्ना के साथ लीना चंद्रवरकर।

ज़िद के हमें तुम बुलावो, मोहब्बत में इतना ना हमको सतावो। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब से आप सुने गीत को 1962 के फिल्म प्रोफेसर से निकाला हुआ, और शंकर जयकिशन संगीतकार और फिल्म में काम किए शमी कपूर के साथ कल्पना जी। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ।

वक्त करता जो वफा तो आप हमारे होते। हाँ, मुकेश जी की आवाज। नेहुंतिन ज़ीफ़नन ज़स्तक 1967 के फिल्म का नाम दिल ने पुकारा और कल्याण जी आनंद जी संगीतकार और इस फिल्म में काम किए रायश्री जी के साथ शशि कपूर जी।

दिल ने फिर याद किया मोहम्मद रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में गीत को आप सुने। फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया 1966 नेखंतिन जसन जस्तक की फिल्म में म्यूजिक कंपोजर मास्टर सोनिक और इस फिल्म में काम किए उन दिनों धर्मेंद्र एंड नूतन जी। उजाला रेडियो

एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। लता जी की आवाज 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में और कल्याण जी आनंद जी संगीत से सजाए और फिल्म में काम किए मनोज कुमार, माला सिन्हा और शशिकला जी। प्रोग्राम का नाम दर्दी दिल।

चला भैया रसिया चला भैया, मोहम्मद रफ़ी और लता जी, इन दोनों की आवाज़ों में गीत को आप सुने 1970 निखंतिन जीफन तक की फिल्म और नाम मन की आँखें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक से सजाए और काम किए इस फिल्म में धर्मेंद्र एंड वहीदा रहमान जी।

तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब से आप सुने 1961 नई खुंतिन ईनन जस्त की फिल्म जबक से निकाला हुआ गीत। और इस फिल्म में संगीतकार थे चित्रगुप्त और इस फिल्म में काम किए महिपाल और श्यामा जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल। आज का प्रोग्राम में एक आखिरी गीत पेश है।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

हे सुनो वालों, मैं हूँ आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला पिंडनेल, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है,

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।